दर्शन परसें गुरु के जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसें गुरु के जन्म मरण दुख जाए। धन वाहिगुरु साहिब जी। वडहंस महला तीजा। गुरमुख सच संजम तत् ज्ञान।

एको ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरप्रसाद जाप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचे सोच न हो वई जे सोची लख वार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना प्रिया पार कब सचे आरा होई है कब कूड़ा है तुटै पाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहे आ जाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है हुक्मी अंदर सब को बाहर।

0: गावे को साज करे तन खे गावे को जी लै फिर देहे
1: गावे को जपे दिसे दूर गावे को वेखे हागरा
0: कथना कथी न आवे तोट कथ कथ कथी कोटी कोट

सुनै सिद पीर सुरना सुनै तरतवल आकाश नानक भगतां सदा वगा सुनै दुख पाप का नास सुने जोग जुग तन पे सुने शाह सिमरत वेद सुने सत्संग दो ज्ञान सुने आठ सठ का इशनान नानक भगतां सदा वगा सुने दुख पाप

0: गावन साध में
1: गावन जति सती संतोखी गावें वीर करारे
0: गावन पंडित पण रखीसरे जुग जुग वेदा
1: गावें मोहनी आमन मोहन स्वर्गा माश पयाले
0: गावन रतन पाए तेरे अठसठ तीर
1: गावें जोध महाबल सूरा गावें खानी चारे
0: गावें खंड मंडल पर पंडा कर कर रखे तारे
1: तेरी तुदनो गावें जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले
0: और केते गावन से मैं चित न आवन नाने क्या विचारे
1: सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई
0: हैप्पी होसी जाय न जासी रचना जे नर जाई
1: रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जे नु पाई
0: कर कर वेखै कीता अपना जिति सी वडियाई
1: जो स्वभाव है सोई करसी हुक्म न करना जाई
0: सो पातशाह हो साहा पातशाहेब नानक रहन जाई
1: मंदा संदोख शरम पत झोली ध्यान के करै विभूत
0: किरखा काल कुवारी काया जुग डंडा पर दीत
1: आई पंथी सकल जमाती मन जीतै जग जीत
0: आदेश दिसै आदेश आर नील नार नाहत जुग जुग एको
1: भगत के आनंद भंडारण घट घट वाजै नाद
0: आप नाथ नाथी सब जाकी रिद से दबरा
1: संजोग बिजोग दो एकात लावै लेखे आवै भाग
0: आदेश दिसै आदेश आर नील नार नाहत जुग जुग एको
1: एका माई जुगत वे आई

ना हो मरण ठाके जाहि जन कह राम वसै मन माहि सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल कथै लो लो आकार जब जब हुकम तब तब कार जत पहारा धीरज सुन यार हरण मत वेद हथियार

0: अलीकन श्रीकन रणाम भाई साम भाई
1: काम है अजाम है अपूत है शूद है
0: लोक है शोक है कर्म है परम है
1: अजीत है अपीत है अबाल है अगाल
0: मान है निदान है नेक है फ्रीक है नमो सर्व मान्य समस्ति निदान्य नमो देव देवे अपेक्षी अपेवे
1: नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे
0: नंगी अनाथे नृसंगी परमाथे नमो पान पाने

0: कलंकं बिनाने कलंक इस रूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे
1: नमो जोग जगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे
0: नमो शास्त्र पाणि नमो अस्त्र माणि नमो परम ज्ञाता

0: मन माने नमो रोग रोग नमस्तंग शनाने
1: नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्टे नमो तंत्र
0: सदा सचदानंद सर्व प्रणाशी नूपे रूपे समस्तल निवासी
1: सदा सिद्धा बुद्धा प्रेत कर्ता अदो उर्दर दंग गंगो
0: परम परमेश्वर पुरुष पालंग सदा सर्वदा सदा।

0: मुहूर्त थाप्यो सबे जय
1: पारम रूप निज मुहूर्त पूर्ण पुरख अपार काल हीन कला संयोगत काल पुरख देश
0: रंग
1: राग न रंग जाक जात पात न नाम
0: गंजन

0: सर्वगंत सर्वहंत सर्वतेनपीख परम वेद पुराण जाकर नित भाखत नित
1: सिमरत प्राण

0: सर्वं हन्ता सर्वं गन्ता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता
1: सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणि सर्वं त्राणि
0: सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता
1: सावल शांत व्यापरसार
0: नौनक नाशिष्ट देवं प्रकाशयन्नंगं स्वरूपे भंगं विभूते
1: परमात्मं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते
0: नंगी नामेतर भंगी तर काम निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे
1: ना पुत्र ना पुत्र ना सत्र ना मित्र ना ताते ना माते ना जाते ना पाते
0: निरसाग्न स्त्री कह मितो मेक सदैवं प्रभा है जय है अजा है
1: भगवती
0: संत व प्रसाद हर है के हाजिर हजूर है मे सो सलाम है समस्त कलाम है
1: साहिब दिमाग है के हुसनल चराग है के कामल करीम है के राज करीम
0: है रोजी रहंदा है के राज करहंदा है करीमल कमाल है कुशल जमाल है
1: करीमल खराज है गरीबल निवाज है हरीफल शिकान है हरासल
0: फिकान है लंकुं प्रणाश समस्त निवास अंगंजन गनी मर जाय करीम है
1: समस्त जुबा है के साहिब किरा है के नरकन पर नास है बेस्तुल निवास है
0: सर्व गोवान ना मेरे सर्वान ना तमाम तुम्हीं जैसे मास्टर जी जाए जमीन और जमा इमी कोली मैं करी मुल कमाल है जरूरत जमाल है
1: अचलंग प्रकाश है के मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मितो विपुल है
0: मितो पस है के आत्म प्रभा है के चल लंग नांग के मितो अपंग है
1: मधुपार शांत वै प्रसाद
0: मन मन पर नाम गुण गान मुदा बर बर गांजार नर पर पांज
1: अन गन पर नाम मन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड
0: अनुभव नाश मन मन प्रकाश गुण गान पुरना जल थल मुदाम जल थल मन दस वस भन जल थल मन दस वस बेअंत ओंकार आदि कथनीय नाद खल खंड ख्याल गुर भर अकाल
1: कर

0: करुणा लय है, हर काल है, कल खंडन है, मह मंडन है,
1: जगदेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व कारण है,
0: जगत के धारण है, जाके करण है, मन माने है, जग जाने
1: है, सर्वंग पर है, सर्वंकर है, सर्वपास्य है, सर्वनाश्य है,
0: करुणाकर है, वसंग पर है, सर्वेश्वर है, जगदेश्वर है,
1: ब्रह्मंडस है, कल खंडस है, परदे पर है,
0: करुणाकर, जप जप तप थप, कृता कृत है, अमृत अमृत है,
1: अमृत अमृत है, करुणाकृत है, कृता कृत है, तनीत
0: अमृतेश्वर है, परमेश्वर है, कृता कृत है, अमृत अमृत
1: है, अमृत अमृत है, नर नायक है, खल गायक है,
0: संपर है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्पायक है,
1: पंचन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जप जाप
0: है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है,
1: परमात्म है, सर्वात्म है,
0: नमो सूर सूर्जे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्री,
1: नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज,
0: नमो राशं तामसं शांत रूपे, नमो परम ततंग ततंग स्वरूपे,
1: नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान,
0: नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने,
1: नमो कले कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे,
0: अलंकार रूपे, अलंकार अलंके, नमो आशासे, नमो बांक बांके,
1: अभंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले, अनंगी अकामे, एक अच्छी छंद,
0: जय लय पय भय,
1: अभू अजू अनाश काज,
0: दंज पंज लख पख,
1: अकाल दयाल लेख भेख,
0: नाम काम गाह टह,
1: अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी,
0: नरागे नरंगे नरूपे नरेखे,
1: अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे, पुचंग पर्याद छंद,
0: नमास्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणाश, अंजल नामे समस्तल निवासी,
1: कामंग भूते समस्तल स्वरूपे, को कर्मंग प्रणासी, सो धर्मंग भूते,
0: सदा सचदा नंस तरंग प्रणासी, करी मुल्क निंदा समस्तल निवासी,
1: अजाय भूते गजाय वगनी में, हरियं करियं करी भल रही में,
0: चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भोगते, सुजम्बव
1: सुमांग सर्वदा,

0: गवायो।
1: बास क्यों बिख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो।
0: साच कहो सुनियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो।
1: काहुले पाहन पूत धरियो सिर काहुले लिंग गरे लटकायो।
0: काहु लख्यो हर वाची दिशा में काहु पशाको सीसन मायो।
1: को बतान को पूजत है पास को मर कान को पूजन तायो।

0: तीर
1: करता तेरे सब कुछ है जिसे सो पावे।
0: सदा सिप्त सलाह तेरी नाम मन वसावे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे।
1: सच्चा नाम मेरा आधार हो साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइया।
0: कर शांत सुख मन आए वसे आज इच्छा सब पूजाइया।
1: सदा कुर्बान किता गुरु बेटो जिस दिया ये बढ़ियाया।
0: कहे नानक सुनो संत हो शब्द तरु प्यारो साचा नाम मेरा आधार हो।
1: वाजे पंच शब्द इत कर सपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया।
0: पंच तूत तुद वस कीते काल कंट कुमारिया।
1: तुर करम पाया तुझे को से नाम हर कह लागे।
0: कहे नानक तहस कहुआ तित कर अनहद वाजे।
1: साची लिवे बिन देह निमाणी देह निमाणी लिवे वाजो क्या करे बेचारिया।
0: तुद बाज

सुर नार मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया जी जंत सब तुद पाए एक वेक परसन आया कहे नानक जसनो आप तुठा तने अमृत गुरते पाया लब लोभ हंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना गुर प्रसादी जिने आप तजया हर वास

मट्टी का क्या धूप है स्वामी, मानस की गति ही सुख टल गुर सेवी है, अहनस सहज सुभाई, दर्शन पर से गुरु कै

सेवक सेवा करे जिस हुकम राय सी हुकम मन्यो विप्रवा का कसबे का मैन पाई सी कसबे पावे जो जसो पर पाई सी।

मानमुख गणत गणामणी करता करे सो होए ताकी कीमत ना पवे जे लोटे सब कोए गुरमत।

खेल गए से पंखनों जो चुंगन दे सिर तल घड़ी के मोहत के चलना खेलन आज के कल

जाए सच्चा पेड़ मल, बिन गुर प्रीत ना उपजे, बिन गुर प्रीत ना उपजे, होमे मैल ना जाए। मन मेरे शरण आवे ता निर्मल होए, मन मुख हर हर कर थके, मैल ना सकी तोए।

जिस प्यारे सोने हो तिसिया के मर चलिए मन तन आगे राख के ऊ भी से करे सतगुर आगे शीश पेट देओ जे सतगुर सच पावे जे सतगुर सच पावे आपे दया करो प्रभ दाते नानक अंक समावे जिस प्यारे सियाने हो तिसे आगे मर चलिए त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवन हमारे एहे कृपा

दर्शन कैसे रौस नहीं, हाँ दोहागन खरी रंजानी, सब कंत है रतियां, मैं दोहागन कित, मैं तन योगन एतड़े, खसम न फ

मैं छट गवाया। मित्र प्यारा नानक जी मैं छट गवाया, रंग कसुंब पुली तो सजन की